0: गिलास तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरेनी संजीसिंगे रेफंबाम तीन ब्रेरेरी केफकसकस चिम तेन सुन तेन मालागास दिलंदुसी दिलने अंगान फिज में ना कावे उन तुकातान सिमिस रेम तेन मालागासिं सुन वोजाने किन्याफ अचाने नात फुन रसेंड जे पा मांग तेन मालागास इज में ना काव रो मांगासियास चाइन निमा माल रो मालागासियावन वो फात किन्याफ लेला सिन वावन राम तेन जास जेम्रिसकम रश्निमीच उल नाम्बान तेन निवोईन वतोन लाजन फमा मेनताय जात तेन लाजन जेन जवन मिशियेन चिकेतोर इन नम तुईन आवन स्यावन उया मामाल रेफा चुआस दे हुन हुन सिशन तेन मालागास न्यानुआ वेंगाम आखो उतेलेन चूला जनत सूचत चियाफेन पेन ग्यास देंदु न्याज चिलेवन निवाई न्यांदी तुम न्यांदेवन
0: शोटा तुम कुला शोटा तुम कुवाव

0: कुलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रजगले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तू चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस्क सांप ना जब फिक्री जान मानने के फुसन लेन बेसाना को दे मनारा का नास वो सेमु सेमु जान ले फिते साना दे फा मनारा का अंतिम दे ए देमरा रे ना तब फिता सो अंतांग मिरी जाने सेंस अब दे दे
2: क्या ना का फिना सु तो फटा रा कौन सा है ये ले फिया ना का फिना जाने मा सु तो वो ना चार चार ले तीनों रो पिया का के ना
3: बुला चुना ये नो Saya nak tarik suit tu jenis maaf terlepas suit tu suit sahaja le suit suit tu nak kafina timnya nak kerja tu mata tu tevala sahaja macam sesuatu macam lala sahaja tu naik sendiri. Saya nak apa yang nak jadi anjaman tu ni mata nak jadi rakyat kita tanjung nanti tunggal ni.
4: Saya nak kafina suit tu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri arah tevirna ni tiko. Arakan panrino teite tamadagaskar de sutun mitsasan ie fankerezana ho azy ireo de mafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafito koa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.